0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है, स्वागत है भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, यह हम सभी जानते हैं। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी कदम कदम पर मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है, रास्ता चाहे जैसा हो, सफर रुकना नहीं चाहिए। जीवन चलने का नाम है, ये सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक खूबसूरत पैगाम भी है। कभी थकान महसूस हो तो थोड़ा ठहर जाएं, लेकिन हार मत मानिए। कभी कोई सपना अधूरा रह जाए तो नया रास्ता तलाशिए, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है, एक नई रोशनी लेकर आती है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर जारी रखते हैं। गिरना कोई हार नहीं, गिरकर फिर उठना ही असली हिम्मत है। तो चाहे सुबह हो या शाम, अपने ख्वाबों की तरफ एक कदम रोज बढ़ाते रहिए। कल क्या होगा इसकी फिक्र मत कीजिए, आज को पूरी ईमानदारी और मुस्कान के साथ जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं चलते रहने का नाम है। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सफर पर यकीन रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है। हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर एक दिन इस सफर से आगे निकल जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं आदमी मुसाफिर है। ये ख्याल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, इसलिए जो पल आज हमारे पास हैं उन्हें शिकायतों में नहीं मोहब्बत और मुस्कान में बिताइए। कभी हम मंजिल की तलाश में इतने बेचैन हो जाते हैं कि रास्ते की खूबसूरती देखना भूल जाते हैं। याद रखिए, असली जिंदगी सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में छुपी है जहां हमें लोग मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं और अनुभव हमारी दास्तान बन जाते हैं। इसलिए किसी से नाराजगी है तो आज ही दूर कर लीजिए, किसी को धन्यवाद कहना है तो देर मत कीजिए, और कोई सपना दिल में है तो उसकी तरफ एक कदम आज ही बढ़ाइए, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं, आते हैं, कुछ पल ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सफर छोटा हो या लंबा, इसे प्यार, अच्छाई और खुशियों से भर दीजिए इस नगमे की तरह।

0: साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी।

0: చాలా బాగా పాడుతున్నారే.
1: పై షెడ్యూ మంద్రం. ఆ

0: పదము చేర్చి పాట కూర్చలేదా
1: శభాష్
0: దనిని.

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
0: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि ये कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
1: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं, जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी इनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
0: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा?
2: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है, उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों न हो, पेरिस की बात क्यों न हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों न हो या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों न कर ले। खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: और मैं जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
1: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई हैं। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती हैं जिसको आपने भी कहा, मैदान से पोडियम तक को। क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था, एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को, वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है वो 720 डिग्री सपोर्ट है और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ। शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
0: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे

0: लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
1: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी, वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं।
0: जी तो मयंक जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे, लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी, और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी न मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
2: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। तो यह तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का। हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच है, कोच ही नहीं थे। तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया। भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस, जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था, उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे, भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी, उसका सामान देगी। तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम, विंटर गेम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले, जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की, वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा

0: कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की। कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है? तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस जिसकी मैंने अभी बात की, उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसन रचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी। नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी, और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों
1: जी
0: को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस, उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल क्रांति आई है। और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं, और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए। और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
0: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ। अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया है।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है, उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है। कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे। लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
0: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी?
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो लाजवाब है। मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में भी मतलब एलिट 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती है
0: जी। और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है।

0: क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है, लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है। अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटीड स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम्स जीत के दिखा दें या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलते रहना पड़ेगा उन्हें, और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस। और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
1: बैडमिंटन से जुड़ा एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18, हालिया एक टूर्नामेंट हुआ है उस टूर्नामेंट में उस अंडर 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजिशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती हैं, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती हैं और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहां पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन रशियन और मलेशियन कोच वहां पे हैं, जिनके भाई जो है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो वहां पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो इनका फोकस देखकर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका एम्बिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
0: मैं आपको बता दूं जी, उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
2: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
0: लक्ष्य सेन खेल ही रहा है अच्छे,
2: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है, और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन स्टिल इन द फ्रे एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहां।
1: बिल्कुल, अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुनते हैं। राजा, अब आप बताइए कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत सुना जाए।
0: मयंक जी ने मुकेश जी का गाना चुना था, मैं भी मुकेश जी का ही गाना चुनूंगा। मेरे से भी पहले एक गाना था जो आज भी मेरे ख्याल से हम सबके लिए रेलेवेंट है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती।
1: वाह क्या बात है।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और IPS मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जोड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
1: बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
0: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला और फिर सबको दे भी दिया है।
0: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
2: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पर रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है,

0: है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
1: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के एक स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी की ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है, तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए, एक अध्यापक पे गई है जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम, फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन, और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को। बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं, और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके, खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है
1: जी।
2: और ही हैज ओनली एलोबरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े
1: जी। सवालों और जवाबों का यह सिलसिला तो जारी रहेगा, फिलहाल बारी है एक और गीत की। मैन जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
0: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ।
1: जी
0: दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैंग जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक वृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है। इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है, जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें साई के जो

0: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था KISC, OKIC, वो तो रहेंगी। तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है, उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का, और एकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
1: जी, तो राजारमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूँ और देखा हूँ, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे, हर जिले में होगा और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते हैं, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है, हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है, और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड, और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान हैं जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम, और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं, और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए, और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
1: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं?
0: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी। 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर, खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
2: बहुत ज्यादा पड़ेगा, और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र, और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी,
2: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है, अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा ये मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी

0: भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करे, तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मैम जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा। ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए। जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था, मैदान से पोडियम तक का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था, आपने उसे दोहराया। तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल उसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक,
1: जी
2: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के रहे।
1: जी
2: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक, यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है।
1: जी और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है। वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
0: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरिया से हैं, बैकवर्ड एरिया से हैं। उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था, उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो
1: जी
0: 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे। उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: और मैन जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
2: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है, भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स, इस तरह के जो टॉप नॉश जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है। तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफकोर्स अधिकारी है ही है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है। एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे
1: जी
2: उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स के सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है। और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है, जैसे

0: चोपड़ा ने चाहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सकें,
1: जी
0: तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
1: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था। मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं। लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस। वहां

0: खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
1: और राजा, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सुना आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं।
0: नहीं, गाता तो नहीं हूँ और मैं श्रोता को डराना नहीं चाहता हूँ धर्मेंद्र, लेकिन खेल का जो मुहिम है, 1958 में एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर एक जोश पैदा कर दी, मैं मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में जितना उनका तारीफ की जाए कम, वो फौजी रहे, बड़े मुश्किल परिस्थिति से उभर कर आए और फिर चल के कॉमनवेल्थ का मेडल जीता उन्होंने, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, रोम ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिश किया उन्होंने। उनके एक बायोपिक बना था भाग मिल्खा भाग, उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना है जो आज भी हम सबको प्रेरित करेगा, हम सबको दिखाएगा कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे।
1: जी, वो कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं?
0: भाग मिल्खा भाग।

0: तो ये गीत भी हमने सुन लिया। सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी है और ये दौर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खेलों के मैदान से पोडियम तक पहुंचने के लिए नई बुनियाद खड़ी की जा रही है, कामयाबी की नई कहानी लिखी जा रही है। खेल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। मैदान मार रहे अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें, तभी मैदान से पोडियम तक पहुंचने का हमारा ये महाअभियान पूरा होगा। तो मयंक श्रीवास्तव जी, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी। राजारमन जी, खेलों में भारत के वर्तमान और भविष्य पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र।
0: तो अब कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सबसे लेता हूं अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक

0: प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का जो बेस्ट बेस्ट वर्जन्स है जो आप अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो आपके फ्यूचर में है, एक कम्प्लीटली न्यू प्लेस में, एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस में, वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर देम एंड बिकम देम. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड गिव्स अस होप टू लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर. एंड या सो दैट इज़ जोहारीज विंडो. सो इफ एनीबडी टेल्स यू और गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट एंड यू डोंट सी इट इन योर सेल्फ, जस्ट नो दैट इट्स कमिंग फ्रॉम द हिडन सेल्फ ऑफ द क्वाड्रेंट. दे सी इट, यू डोंट सी इट. सो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग योर सेल्फ एंड बीटिंग योर सेल्फ अबाउट वेदर इट्स ट्रू और नॉट, जस्ट बिलीव इट एंड यू ऑल्सो टेल अदर्स इफ यू लाइक समथिंग अबाउट देम. ट्रस्ट मी, इट मेक्स देयर डे.

0: आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो, मैं हूँ आरजे कैवल्या। तो अब आज हमारा पहला कॉलर कौन है सुनते हैं। हेलो रेनबो। हेलो।
1: हेलो मैम
0: हाय मैम, आपका नाम?
1: जी, मेरा नाम आयशा सिद्दीका है और मैम टॉपिक बहुत अच्छा लाया है आपने। तो मैम टॉपिक पे मैं बोलूँगी कि फेस्टिवल के बारे में आप बता रहे हैं।
0: हाँ
1: तो फेस्टिवल बहुत से हर फेस्टिवल होते हैं जो एक मेमोरी

0: के बारे में बता रही। तो इसमें ईद का मौका जो होता है हमारे पास रमजान या बकरीद का, तो उसमें हम सारे यानी कि किसी से बैर हो जाता है या किसी से बात नहीं हो पाती और किसी बात को लेकर हमें झगड़ा हो जाता है, तो ईद का एक मौका ऐसा होता है ऊपर वाले की जो बहुत बड़ी नियामत है और ऊपर वाला वो मौका हमको देता है साल में एक बार, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए हमें। और वो शुक्र अदा करते हैं, कितना भी शुक्र अदा कर ले शुक्र अदा नहीं कर पाते, उससे हमारी अंदर की जो नफरतें हैं जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाती है और हम सारे गम को और सारे दुख को हम बुलाकर फिर से एक हो जाते हैं।
1: बहुत
0: तो ये मेरी बात है। और मैम मेरे बड़े भैया उनका नाम शेर खान है, तो उनकी आज बर्थडे है, तो मैं उनको विश करूंगी कि अल्लाह पाक ऊपर वाला उनको जो है उनकी सालगिरह पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और अल्लाह उनके दामन को खुशियों से आबाद कर दे, हर एक की मोहब्बत हर एक का प्यार उनको अता होते रहे और उनके जिंदगी में जो गम है वो गम दूर हो जाए, और जो उनको समझ नहीं पाते तो अल्लाह पाक ऊपर वाला उनको तौफीक और हिदायत दे ताकि उनको समझे, उनकी कदर करे, उनकी इज्जत करे। मैम उनके लिए एक सॉन्ग प्लीज आप अपने तरफ से बर्थडे वाला कोई भी एक पे कर दे तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा।
1: ठीक है आप ओके आयशा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स।
0: मैम एक सॉन्ग उनके लिए।
1: हाँ ठीक है आयशा जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे आयशा जी बोल रहे थे, हम जो नफरतें होते हैं वो सब फेस्टिवल्स के समय दूर हो जाते हैं, तो उनके लिए ये गाना सुनते हैं।

0: FM Rainbow 101.9.
1: ఇప్పటి నుంచి 7:15 వరకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ స్పాన్సర్ కార్యక్రమం వింటారు. తర్వాత 7:15 నుంచి 7:30 వరకు హెలో రెయిన్బో లైవ్ ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్. ఓన్లీ 15 మాత్రమే ఉంది. అందులో టాపిక్ ఏంటంటే, మీ పిల్లల్ని అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ తాతయ్యలతో మాట్లాడిస్తున్నారా, ఎంత సమయం వాళ్ళతో కేటాయిస్తున్నారా అనే విషయాన్ని నాకు 0402323 0030 0402323 4821 0402970 4715 కాల్ చేసి చెప్పండి, మీ పిల్లల్ని అమ్మమ్మ లేదా నాన్నమ్మ తాతయ్య వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తున్నారా, టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారనే విషయాన్ని నాకు కాల్ చేసి చెప్పండి. రైట్, మరి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఫ్రమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ స్పెషల్ కార్యక్రమం మీరు వింటారు.
2: A talk on protection of women from domestic violence act access to justice and Sakhi one stop center scheme by Ankita Sarkar migration and asylum project and Sanju Kumari member one stop center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीबी एक्ट है, ये 2005 में आया है. तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का. और ऐसा तो नहीं है. तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा इम्पोर्टेंट का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है. और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज़ हैं, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं. तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सज़ा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीज़ों पे फोकस कई ज़्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है. पहला सवाल ये है कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं. और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं. सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं. तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है. इसके अंतर्गत एक और जो बहुत

0: इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है. जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है. और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए. तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रो बोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके. तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है. सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है. हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए.
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम. वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक.

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं. दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं. सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है. कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है. हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा. वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे

सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड अगर वो आती हमसे बात करने के लिए, तो सबसे पहले वो ये कहती है कि हमारी जो, अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं, साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं। ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में, और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ाकर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, वो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहाँ पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिसे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकते हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो आप अपनी

0: परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसी लिख रहे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One-Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One-Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। अभी आप मेरे रेडियो साथी ये लेस से रिमझिम हैदराबाद समाप्त फरमा।

रहे थे। सामाइन, स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के 9:30 और 30 सेकेंड हुआ चाहते हैं। पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

हमारी जिंदगियों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हौसला। हौसला क्या है? क्या यह सिर्फ बहादुरी का नाम है? नहीं, हौसला सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि ये एक अंदरूनी क़ुव्वत है, एक ऐसी आग है जो हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तरगीब देती है। ये वो जज्बा है जो हमें नाकामी के बाद दोबारा उठने, ठोकर खाकर संभलने और मुश्किल हालात में साबित कदम रहने की हिम्मत देता है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, जब मायूसी के बादल हमें घेर लेते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपने अंदर के हौसले को जगाना होता है। तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं, साइंसदानों और कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। उन्हें बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की, लेकिन वो हर नाकामी को एक नया सबक समझते रहे। उनका मशहूर कौल है कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जो काम नहीं करते। ये हौसले की ही आला मिसाल है, हौसला और मकसद का तायुन। हौसला हमें खतरात मोल लेने की तरगीब देता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमें हौसले की ज़रूरत होती है। नई महारतें सीखना, नए ख्यालात पेश करना या किसी भी मुश्किल काम में पहल करना, ये सब हौसले के बगैर मुमकिन नहीं। याद रखें, हर बड़ा ख्वाब हौसले की पहली सीढ़ी चढ़ने से ही पूरा होता है, चाहे वो किसी नए कारोबार का आगाज़ हो, कोई मुश्किल इम्तिहान पास करना हो या अपने माशरे में कोई मुस्बित तब्दीली लाना हो। ये सब हौसले की ही बुनियाद पर खड़े हैं। साबित कदमी और खुद एतमादी। हौसला हमें साबित कदमी सिखाता है। जब हम किसी मकसद के हुसूल के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कभी लोग हमारी हौसला शिकनी करते हैं, कभी हालात साजगार नहीं होते, और कभी खुद हमें अपने इरादों पर शक होने लगता है। ऐसे में हौसला ही हमें अपने मकसद से भटकने नहीं देता और हमें मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करते रहने पर आमादा करता है। ये हमें खुद एतमादी देता है कि हम उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और इन पर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, वो खिलाड़ी जो मैच के आखिरी लम्हात तक अपना हौसला नहीं हारते,

जीत के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते हैं वो फतेहयाब होते हैं। हौसला और मुस्बित सोच। हौसला हमारी शख्सियत को निखारता है। एक हौसलामंद शख्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है। उसकी मुस्बित सोच और उसकी अज़्म की पुख्तगी दूसरों को भी आगे बढ़ने की तरगीब देती है। जब आपके अंदर हौसला होता है तो आप मुश्किलात को मसाइल नहीं बल्कि मौके समझते हैं, जब आपको मज़ीद मजबूत बनाते हैं। ये एक वायरल असर की तरह है। जब एक शख्स हौसला दिखाता है तो उसके आसपास के लोग भी मुतासर होते हैं और अपने अंदर की सलाहियतों को पहचानते हैं। हौसले की परवरिश कैसे की जाती है? सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने अंदर इस हौसले की शमा को कैसे रोशन रखें और इसे कैसे परवान चढ़ाएं। अपने छोटे छोटे मकासद तय करें। जब आप छोटे अहदाफ हासिल करते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है और आप बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार होते हैं। नाकामियों से सीखें। हर नाकामी को एक सीखने का मौका समझें, ना कि मायूसी का सबब। अपनी गलतियों से सबक हासिल करें और आगे बढ़ें। मुस्बित लोगों से ताल्लुक़ रखें। ऐसे अफराद के साथ वक्त गुजारें जो आपको तरगीब दें और आपके हौसले को बुलंद करें। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें। अपनी ताकतों को पहचानें और उन पर एतमाद करें। अपने माजी की कामयाबियों को याद करें। जब कभी हौसला टूटने लगे तो उन लम्हात को याद करें जब आपने किसी मुश्किल को उबूर किया था। तो दोस्तों, आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारेंगे। चाहे जितनी भी मुश्किलात आएं, हम उनका सामना करेंगे, उनसे सीखेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। याद रखें, कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हौसला रखते हैं, जो गिरकर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने दिलों में हौसले की शमा रोशन रखें, क्योंकि यही शमा हमें तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाती है और हमें मंजिल तक पहुंचाती है।

लेकिन आज़ादी के साथ साथ कुछ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियां भी वाबस्ता होती हैं। अगर आज़ादी के साथ जिम्मेदारी का एहसास ना हो तो यही आज़ादी इंतजार, बदआमनी और खुदगर्जी का सबब बनती है। इसलिए यह हकीकत है कि हमेशा हमारे सामने रहने चाहिए कि आज़ादी सिर्फ एक हक नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।

भारत की आज़ादी की एक तवील जद्दोजहद, कुर्बानी और मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी के लिए बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की। इन्होंने कैद व बंद की सोबतें झेली, जान व माल की कुर्बानियाँ दी और अपने मुस्तकबिल को ख़तरे में डालकर आने वाली नस्लों के लिए आज़ाद फ़ज़ा फराहम की। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख हमें यह सबक देती है कि आज़ादी आसानी से हासिल नहीं होती, इसके लिए बेशुमार लोगों की मेहनत, कुर्बानियाँ और अज़म शामिल होता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस आज़ादी की कदर करें, इसे मज़बूत बनाने के लिए अपना अपना किरदार और हक़ अदा करें।

आज़ादी का पहला तकाजा कानून की पाबंदी है। एक आज़ाद मुल्क में हर शहरी को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून को नज़रअंदाज करे और कानून से बालातर है। अगर हर शख्स अपनी ख्वाहिश को कानून से बालातर समझने लगे तो माशरे में बदआमनी हो जाएगी। एक ज़िम्मेदार शहरी कानून का एहतराम करता है, ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी करता है, सरकारी व अवामी इमलाक की हिफाजत करता है और दूसरों के हकूक का ख्याल रखता है।

आज़ादी का दूसरा अहम तकाजा वतन से मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत सिर्फ कौमी त्योहारों के मौके पर झंडा लहराने या नारे लगाने तक महदूद नहीं होनी चाहिए। हकीकी हुब्बुल वतनी यह है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दें, सफाई का ख्याल रखें, माहौल को आलूगी से बचाएं, अवामी इमलाक की हिफाजत करें और मुल्क के मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दें। एक तालिबे इल्म का वतन से मोहब्बत का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि वो दिल लगा कर तालीम हासिल करे और मुस्तकबिल में मुल्क व कौम की खिदमत के काबिल बने।

आज़ादी के साथ साथ इजहारे राय की जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने ख्यालात बयान करने की आज़ादी हासिल है, लेकिन ये आज़ादी किसी दूसरे इंसान की इज्जत मजरूब करने, झूठी खबरें फैलाने, नफरत पैदा करने या किसी तबके के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का हक नहीं देती। ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है।

हमें चाहिए कि कोई भी खबर या पैगाम आगे बढ़ाने से पहले इसकी हकीकत जाने। एक ज़िम्मेदार शहरी अपनी आज़ादी इजहार को सच्चाई, शाइस्तगी और अखलाक के दायरे में इस्तेमाल करता है।

तालीम और शऊर भी आज़ादी की लिए निहायत ज़रूरी है। हमें यानी तालीम इंसान को अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाती है, इसे अपने हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह करती है। एक तालीम याफ्ता बाशऊर कौम ही अपनी आज़ादी को सही मानों में इस्तेमाल कर सकती है। तलबा कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इसलिए इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम के साथ साथ किरदार साजी पर तवज्जो दें। मेहनत, दयानत, नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और दूसरों की मदद जैसे औसाफ़ एक मज़बूत कौम की बुनियाद बनते हैं।

हमें ये भी समझना चाहिए कि हुकूक और फ़राइज़ का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपने हुकूक का मुतालबा तो करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं। हम बेहतर सड़कें चाहते हैं, मगर ट्रैफिक कानून की पाबंदी नहीं करते। साफ शहर चाहते हैं, मगर कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। तरक्की चाहते हैं, मगर अपने काम में दयानतदारी नहीं दिखाते। हकीकी आज़ादी इसी वक्त मजबूत होती है जब हम अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ भी पूरी ज़िम्मेदारी से अदा करें।

ऊपर वाले को याद कर। टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए। टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए।

दुनिया महज लेन देन का नाम नहीं, बल्कि ये सखावत, ईसार, खैरख्वाही की एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है जो माशरे को जोड़ती है, इंसान को अखलाकी बुलंदी अता करती है। दुनिया की हकीकत को समझना इंसानी शऊर और फहम का अहम तरीन मौजू रहा है। फ़लसफ़ा, अखलाकियात और रूहानियत ने दुनिया के ज़ाहरी चमक दमक, इसके पसे पर्दा मौजूदा असल मफहूम को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से वाज़े किया है।

दुनिया की सबसे बड़ी सितमजर्फी यह है कि ये हर तरफ मेला सजा है, रौनकें हैं, इंसान का हुजूम है, मगर इस हुजूम में हर शख्स तन्हाई के दर्द से गुजर रहा है। कोई खुशी में डूबा है तो कोई हसरतों के बोझ तले दबा है। मेला फिल्म में शकील बदायूनी ने इस अबदी सच्चाई को कमाल खूबसूरती से कैद किया है।

दुनिया की नापायदारी और सराय का फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा कहता है कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इंसान मुट्ठी बांधे आता है, हाथ पसारे चला जाता है। गीतकारों ने जिंदगी और दौलत के इस फरेब को इंतहाई सादा मगर दिल को छू लेने वाले अंदाज में बयान किया है।

सुरीले गीत सुन रहे थे। सामाइन, बज़्म नैरंग को जाए रखते हुए आइए सुनते हैं कल बज़्म नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। कल रात 9:30 पर बज़्म नैरंग का आगाज़ होगा हरफ़े ताविंदा से। तहरीर व पेशकश जनाब अज़मतुल्ला खान की है। बिसात गज़ल में मुजफ़्फ़र उनिसा नास की गज़लियात पेश करेंगे। गीत सुरीले गाते जामे पुराने फिल्मी गीत सुनाए जाएंगे और हमारी बज़्म का इख्तिताम पयाम शब पर होगा, जिसकी तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की है। यह था कल पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। सामईन, आइए बज़्म नैरंग के आखिर में हज़्ब दस्तूर पयाम शब पर हमारी बज़्म का इख्तिताम करते हैं। पयाम शब की तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की है।

0: ये तेरा गुलसिता तेरा चमन कब मेरी नवा के काबिल है, नगमा मेरा अपने दामन में आप अपना गुलसिता लाता है। इंसान की असल पहचान दूसरों के सहारे या माहौल से नहीं, बल्कि उसके किरदार, इल्म, फिक्र और सलाहियतों से होती है। जिसके अंदर इखलास, मोहब्बत और सच्चा हुनर हो, वो जहाँ भी जाता है अपनी मेहनत से खुशबू, रौनक और कामयाबी पैदा कर देता है। वो दूसरों के बाग का मोहताज नहीं रहता, बल्कि खुद अपने गुलसिता तामीर कर लेता है। दूसरों की तारीफ या सहूलत के मुंतजिर न रहिए। बाकिरदार और बाहिम्मत इंसान हालात का गुलाम नहीं बनता, बल्कि हालात को बदलने की कोशिश करता है। हकीकी अजमत मुकाम से नहीं, बल्कि इंसान के फिक्र, अमल और अखलाक से पैदा होती है। अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी मौजूदगी ही माहौल में मुस्बित तब्दीली ले आए। जो शख्स इल्म, किरदार और इखलास का सरमाया रखता है, वो दूसरों के साए का मोहताज नहीं होता। उसकी मेहनत, उसका हुनर और उसकी नेकी ही उसका गुलसिता बन जाती है, और वो जहाँ जाता है वहाँ उम्मीद, खुशबू और रोशनी बिखेर देता है।
1: सामाईन, अभी आप पयाम शब समात फरमा रहे थे। तहरीर पेशकश जनाब जैदी की थी। सामाईन, इसी के साथ ही बज़्म नेरंग अपने अख्तिताम को पहुँचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म नेरंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शब खैर, आदाब।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी खबरें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं,

0: बच्चों को नौकरी और माताओं के लिए बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और

0: अहम भूमिका हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज यूजीसी नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence.

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be addressing fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका भी
0: वार्म वेलकम. आकार,
2: थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले सुर्खियां.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़.

0: into Indian equities during the first 2 weeks of August. In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week. And domestic investors to focus in on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले दो सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई और घरेलू निवेशक अगले सप्ताह एफओएमसी मिनट्स कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: दिल्ली से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। ललित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन में लॉस बुक करते हैं 1,00,000 रुपए का, और सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और शेयर में हम 5,00,000 रुपए का कैपिटल गेन ले लेते हैं, तो मुझे क्या जो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में वो किस अमाउंट पे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा?
3: ललित जी, जो आपका सवाल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपिटल लॉस करते हैं, जैसे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के करते हैं, और वहीं पर अगर उस सेम फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरे कुछ कैपिटल गेन्स होते हैं, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म है वो दोनों के साथ हो सकते हैं। तो एक ये सर्टेन कंडीशंस होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए, जो 31 जुलाई की डेडलाइन होती है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। जो आप बाद में लेट रिटर्न फाइल अगर करेंगे तो फिर आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर कुछ एक जो लॉस रह जाता है उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया है, आप एक दफ़ा बेहतर रहेगा अगर किसी एक टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले दो सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की रफ्तार अगस्त में भी जारी है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणामों के कारण खरीदारी को समर्थन मिला है। इस बीच ऋण बाजार में भी विदेशी निवेशकों की रुचि देखी गई है। अगस्त में अब तक जनरल लिमिट रूट के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों में 69 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
0: Okay, Akar, very interesting point somebody was discussing with me, and I'm in turn asking you about this. What should I choose, dollar or gold?
3: I would say gold here, because when it comes to the Indian portfolios, so gold has a different role in your portfolio. It basically helps you hedge the risk. So what we have seen over the years is that whenever equities fall or there is uncertainty in the market, a fear in market, gold generally shines. So in such a scenario, it is better to have gold, but at the same time ensure that it does not form major part of your portfolio, because it is not a productive asset. When we invest in equities, when we invest in equity stocks, there we do get dividend. There the whole system, a business is working wherein it is earnings, quarterly earnings comes in. When we are investing in fixed income, therein the earnings happen

0: through the way of interest, a fixed charge on the revenue of the companies, whether they are making profit or not. But in the case of gold, the price depends only on the demand and supply. So it is basically dependent on the other person, which is willing to pay, over and above or less than what you actually paid. So for that reason, hold it in your portfolio, but only as an insurance, maybe 5 to 10% or maximum 15%, not more than that.
1: Okay. And you just answered our listener about July 31st being the last date to, file our IT returns. What is important is that people do not plan their tax outgo throughout the year. So what kind of planning should one do so that they are not taken in by surprise towards the end of March that, okay, where should I, invest so that my tax exposure is not much? How should one plan this?
0: So firstly, in this particular case, it was broadly related to the setting off and the carry forward of capital losses, which is impossible if, someone doesn't file the returns on time, the 31st July. More than that, this planning was, had more relation in towards the deductions which we used to, take on and the investments we used to make during the month of January to March, the Section 80C investments. All these, deductions have by far gone in the new tax regime. Yeah. So, but even in that case, I would say for that reason, one should not stop investing and rather look at their, the whole income or the income plan at the very beginning of the financial year, plan their advance taxes and, if capital losses or gains planned any, plan their everything systematically.
2: Amit हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं. अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल.
3: मैडम थैंक यू. मैडम मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि हम ऑनलाइन यदि गोल्ड लेना है 1 ग्राम 2 ग्राम ये ले सकते हैं क्या जो इसे गोल्ड परचेस करते म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं यूनिट्स परचेस करते हैं हम लोग तो सपोज मैं सिर्फ 1 ग्राम परचेस करना है या तो 5 ग्राम तो क्या कुछ सोर्स कैसा है.
0: अमित जी बिल्कुल गोल्ड अगर आपको जैसे ऑनलाइन परचेज करना है तो देखिए सबसे पहले जो बहुत एक अच्छा तरीका था वो भारत गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जो कि 1 ग्राम के यूनिट में इशू होते थे और इसमें जो भी गोल्ड का प्राइस होता था उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था. बट अभी काफ़ी समय से जो इसके जो प्राइमरी इशू होता था जो फ्रेश ट्रांचेज होती थी वो नहीं आई है तो ये केवल सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है. तो उसकी एब्सेंस में जो एक बहुत अच्छा तरीका आपके पास गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड है. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. जो गोल्ड ETF है वो एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है और इसमें निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो. ये एकदम फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है. आप काफ़ी सारी कंपनीज के गोल्ड ETFs हैं उनमें से आप कोई भी जो कम खर्चे वाला कम एक्सपेंस रेशियो का हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं. और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करते या फिर आप एक सिस्टमैटिकली भी करना चाहते हैं SIP के जरिए तो बहुत ही एक आसान तरीका है आप गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन टर्न आपका पैसा जाके ETF में इन्वेस्ट कर देगा. तो एक कन्वीनियंस के तौर पर और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है.
2: गाजियाबाद से हम आशू को जोड़ेंगे मगर उससे पहले श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान सर्राफा बाजार की स्थिति कैसी रही. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई. अमरीकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट तथा उम्मीद से कम अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई. इन सभी कारणों से सोने और चांदी की कीमतों को बल मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 1.8% बढ़ा और 1,54,506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% कर 2,35,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची. कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 0.8% से अधिक बढ़कर $4,437 से अधिक प्रति ट्रायउंस पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 2.5% की बढ़त के साथ $65.10 प्रति ट्रायउंस पर पहुंच गई. और गाजियाबाद से हम जोड़

0: क्योंकि देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारे को नहीं पता कि उस दिन जो मार्केट का लेवल है वो उसके आगे वो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और उसने आज के आज पूरा का पूरा अमाउंट निवेश कर दिया और ठीक एक हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई 10% 20%, तो जो पूरा का पूरा पैसा है उस पूरे के पूरे पे वो रिस्क आ जाएगा, वो वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे
1: 10-20% का तुरंत का घाटा।
0: बिल्कुल, अगर मान लीजिए अगर किसने 1 लाख लगाया वो सीधा 90 हज़ार हो जाएगा, 80 हज़ार हो जाएगा। और यहाँ पे एकदम से इतना बड़ा लॉस देख करके बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एंगजाइटी होती है।
1: हतोत्साहित मन हो
0: हाँ
1: जाता
0: जी,
1: है।
0: तो वो उस वक्त तो फिर उनको ये लगता है कि जितना पैसा बचा है वो मार्केट से निकालो और यहाँ से भागो, और उसके बाद वो लोग फिर कभी इक्विटी में निवेश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे बेनिफिट जो अगर आप फ्रैक्शंस में पैसे लगाएंगे तोड़ तोड़ के, तो ये रहेगा कि मान लीजिए उस 1 लाख में से आज आपने खाली 10 हज़ार लगाया हो, तो आपने सोचा होता कि मैं हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, अगले महीने तक वो मार्केट 10% गिर गया होता, तो यहाँ पे आप जब वो और नए 10 हज़ार लगा रहे हैं आप अपने परचेज कॉस्ट को एक तरीके से एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले आपने थोड़ा महंगा खरीदा था अभी आप थोड़ा सस्ता खरीदे और थोड़े ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप SIP के थ्रू निवेश करिए। अगर आपके पास लमसम है भी तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के वहाँ से SIP चालू कर सकते हैं, और अगर आपको इस चीज़ का डर लगता है कि आप वो पैसा वहाँ से कहीं और खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे जो कि आमतौर पर रहता है, तो आप STP का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना फंड हाउस चुनिए, उनके एक लिक्विड फंड में उस पैसे को पूरे लमसम को डालिए और वहाँ से एक STP सेटअप कर दीजिए अपने इक्विटी फंड के लिए।
1: बिल्कुल। दिल्ली से हमारे साथ वीर जुड़ रहे हैं। वीर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर। सर
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म गेन्स एप्रिशिएट कोर्स हो जाएगा जी?
0: शॉर्ट टर्म से अगर जो शॉर्ट टर्म गेन से आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो संभव नहीं है। लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही हो पाते हैं, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़े एक टैक्स एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें।
3: So, Akar, we've been talking about quite a bit on, how the market panic happens amongst the people, and you have addressed it quite a bit as well. Given the market swings that we are seeing these days, primarily due to the geopolitical developments, how should an investor deal with the market panic? Of course, you are saying stay there, buy, through SIP and all that. But are there any other ways in which a panic can be tackled?
0: So I think firstly one should be reduce the time of their news watching. So quite often what happens is that we
3: No,
0: get
3: as you
0: through.
3: said, don't
0: Yeah.
3: even look at your portfolio for a month.
0: Yes, yes. And even on the other angle, don't get glued to the news TV channels because they keep on repeating the negative points one after the other. So it's better to stay informed, maybe hear it for just like 30 minutes or so during the day. And that's it. I mean, that's enough. So it will help you psychologically to, stay calmer and maybe.
3: What about the financial discipline?
0: Yeah. So basically, yeah, it will help you there. But I mean, because if you get panicked, I mean, when you start watching the news and you get panicked, then you start withdrawing your money because then you will start feeling that okay, this is happening. Maybe it will affect the economy and then the markets will go down. So I mean, that way is to probably get down.
1: ऑल राइट, भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते सर। सर, इन अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ से आफ्टर 50, इनिशियली इट इज गुड टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी, मोर इन इक्विटी एंड प्रोबेबली 100% इक्विटी, बट एट दिस स्टेज आफ्टर 45-50, व्हाट इज योर सजेशन? शुड वी गो, अभी इक्विटी में हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, तो शुड आई गो फॉर मोर ऑन डेट फंड? हालांकि डेट फंड में प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न इज वेरी वेरी लो, हार्डली 5.8% ऑन ICICI बॉन्ड फंड और ICICI शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। इन दोनों में क्या फर्क है? Should we go for bond fund or short term bond fund या क्या? And is debt fund a good protection against inflation? Because it is not giving even more than 6%. So, or is there any better avenue for retirees like us?

0: for them?
1: For a normal retail investor, unless until you have those skills to evaluate it and you know, have that temperament, don't go for them directly. Because if you invest in a mutual fund scheme, your fund manager is already there to, you know, do that hard bit of work and take those decisions. But yes, at the same time, if you know, you feel very strongly positive of a particular IPO, you have analyzed it yourself, you understand what kind of you know, work that company does, and you have gone through the annual the complete prospectus, and you know, you have that temperament that, you know, if soon after investing on the listing day there won't be much gains, but you still be able to okay and hold the stocks for a longer period of time, then yeah, definitely you can go and invest.
2: अगर मेरे पास कुछ पैसे हों जो मैं हर महीने खर्च करना चाहूँ, SIP में इन्वेस्ट निवेश करना चाहूँ, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं, इसमें मैं परफॉर्मेंस देखते हुए मैं सब में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूं, या मैं ये देखूं कि यहाँ इस पर्टिकुलर कैप में मुझे सबसे अच्छी बढ़त दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, तो मैं यहाँ पर अपना वो जो सारा पैसा है हर महीने जो
0: मैं
2: जी बिल्कुल
1: इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको उस पैसे की आवश्यकता कितने सालों के बाद होगी, वो क्या पर्पस है जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं. क्योंकि इक्विटीज़ के अंदर भी, जैसे कि आपने कहा, जो सारी कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इन सब के लिए एक अलग अलग सूटेबल होराइजन होता है. केवल ये देखना कि हाँ, स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले साल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए तो मैं उसमें निवेश कर देता हूँ, सही नहीं होएगा. क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इनमें उतार चढ़ाव बहुत जोर से आता है, और आमतौर पर इसके लिए 7 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए. तो अपना होराइजन पक्का कीजिए, फिर फंड का चुनाव कीजिए.
2: बिल्कुल आकार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए.
1: थैंक यू
0: आकार फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks ऑफ ऑगस्ट. In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week, and domestic investors to focus on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: यू आर लिसनिंग टू अ रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ टुडेज मार्केट मंत्रा प्रोग्राम, ओरिजिनली एयर्ड एट 6:30 PM.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, आपके साथ मैं विकास।

फिल्म का नाम है प्यार का मौसम और 1969 की ये फिल्म है। और इस प्रोग्राम के आखिरी गीत के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक

0: अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स यानी वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कल कहा कि विशाखापत्तनम माने जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said, the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan, yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building, guided by the principle of Nation First. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kattankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047. Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. Air India has announced that all its flights to and from Visakhapatnam will operate from the new Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram from today, using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights from Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. Following the Controller and Auditor General of India CAG report on drinking water quality, Railway Minister Ashwini Vaishnaw yesterday conducted a day-long review of drinking water quality across the railway network. He also directed officials to take immediate corrective measures to ensure safe and clean drinking water for passengers. As part of the measures, a new tank-to-tap water filtration and monitoring system will be installed at nearly 20,000

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को

0: फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणाओं और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते, बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
2: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो, और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं, जो नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी उनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी, बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
1: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा?
3: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है, उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों न हो, पेरिस की बात क्यों न हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों न हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों न कर ले। खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: और मैं जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
2: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई है। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती हैं जिसको आपने भी कहा, मैदान से पोडियम तक को। क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है, और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था, मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था। एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है, वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ। शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये एक इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे किसी

0: स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है।
1: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
2: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं।
1: जी, तो मयंक जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी, और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी न मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
0: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे स्थानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। तो यह तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का। हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच है, कोच ही नहीं थे। तो जो पुराने खिलाड़ी है उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया। भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस, जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था, उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे, भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी, उसका सामान देगी। तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम, विंटर गेम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले, जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की, वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलिट

0: लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस जिसकी मैंने भी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी, और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस, उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी तो पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल क्रांति आई है। और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
0: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ, अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है। उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे। लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
0: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी?
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो तो वो लाजवाब है। मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में अभी मतलब एलिट 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती है
0: जी। और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है, लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है। अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटी स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम जीत के दिखा दें या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलता रहना पड़ेगा उन्हें, और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस। और मुझे पूरा विश्वास

0: बात है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
1: बैडमिंटन से जो है एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकान दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की, पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18, हालिया एक टूर्नामेंट हुआ है, उस टूर्नामेंट में उस अंडर 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजिशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती हैं, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती हैं और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहाँ पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन, रशियन और मलेशियन कोच वहां पे हैं, जिनके भाई जो है BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो वहां पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो इनका फोकस देखकर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका एम्बिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
0: मैं आपको बता दूं,
1: जी
0: उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
2: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं,
0: सात्विक साईराज को,
2: सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
0: लक्ष्य
2: वो
0: सेन खेल ही रहा है अच्छे से।
2: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन ही स्टिल इन द फ्रे एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहां।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और IPS मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
0: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था, और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट्स इन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें, कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
1: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है, पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट. और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला और फिर सबको दे भी दिया है.
1: और मैन जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया,

0: स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
1: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पर रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
0: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के एक स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी की ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है। तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम, फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन। और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके, खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है और ही हैज ओनली एलाबोरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाए कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
0: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। फिलहाल बारी है एक और गीत की। मैन जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
1: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैंग जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी

0: बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है, इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है NCOE नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था कि ISC OKIC वो तो रहेंगी, तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
1: जी तो राजा रमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूँ और देखा हूँ, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े, फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते हैं आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है, हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
1: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए?
0: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी। 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
2: बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र, और

0: मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी
0: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है। अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा यह मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा यह मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करे तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मैम जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा, ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए, जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था, मैदान से पोडियम तक का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया, तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल इसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक
1: जी,
2: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के
1: जी।
2: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक, यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है
1: जी। और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है, वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
0: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरियाज से हैं, बैकवर्ड एरियाज से हैं, उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था, उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: और मैन जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
2: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स, इस तरह के जो टॉप नॉश जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफ कोर्स अधिकारी ही हैं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है। एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने

0: आपको बताया जितनी चीज़ें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे
1: जी
0: उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स के सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है, और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
1: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था। मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम्स की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं। लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस। वहां पे स्क्वाट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इम्प्रूव कर दिया, और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
2: और राजा सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों

पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयसी और कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर आपके साथ ही यहां पर स्टूडियो से सीधा आपके संग संग कुछ गाने गुनगुनाने आई हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में सहरा फिल्म का ये गीत दोस्तों आपने सुना। बोल सजाए हसरत जयपुरी ने और संगीत रामलाल हीरा पन्ना का। आइए अब रुख करें अपने इस अगले गीत की तरफ जो हमने लिया फिल्म अनुपमा से। बोल हैं कैफी आजमी के और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। फिल्माया गया धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर और गाया लता मंगेशकर ने।

मोहम्मद रफी, मुकेश और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म का नगमा भी आपने सुना दोस्तों, जो फिल्माया गया धर्मेंद्र, नूतन और रहमान पर। बोल सजाए जीएल

0: वल ने और संगीत दिया सोनी कोमी ने। बढ़ते हैं हम अपने इस अगले गीत की तरफ जो लिया हमने फिल्म पारस मनी का। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, बोल हैं असद भोपाली के, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्माया गया है महिपाल और गीतांजलि पर।
1: वो जब याद आए बहुत

वो कहते हैं ना कि जब किसी की याद में डूबो तो बस टूट जाने का दिल करता है, पर क्या करें, अपने दिल को भी यूं ही संभालना पड़ता है। काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, मुझे भी एहसास हो सब कुछ तेरी तरह, मुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नजरअंदाज करूं तुझे तेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सोऊं बेपरवाह तेरी तरह।

दोस्तों, जैसा कि इस गीत से ही जाहिर है कि ये गीत हमने लिया फिल्म आए दिन बहार के से। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्माया गया धर्मेंद्र और आशा पारेख पर। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने और आइए अब बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को अगले गीत से सजाते हुए। तो अगला नगमा जो मैं आपके सामने रख रही हूँ दिल दिया दर्द लिया फिल्म से है, आवाज है मोहम्मद रफ़ी की, बोल सजाए हैं शकील बदायूं ने और संगीत दिया है नौशाद अली ने।

कोई चाहिए से कोई नहीं चाहिए तक का सफर तय करना बहुत मुश्किल है। चाहिए से नहीं चाहिए तक पहुंच पाना, मगर जरूरी है ये सफर भी तय करना, क्योंकि किया जो सफर हमने चाहने से न चाहने तक का, वो मिला या ना मिला ये बाद की बात है। एक मुलाकात खुद से हो गई, बस यह कमाल की बात है।

0: मंगेशकर की आवाज में फिल्म भीगी रात का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। फिल्म आया गया मीना कुमारी पर, बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत रोशन का। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संघों में श्रेयसी, और आइए अब बढ़ चले अगले इस गीत की तरफ। आरती फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है रोशन का।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे?
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

अगर कभी जिंदगी मुझे थका दे या मैं अंदर ही अंदर बिखरने लगूं, अगर कभी जिंदगी मुझे थका दे या मैं अंदर ही अंदर बिखरने लगूं, तो मेरे आंसुओं की वजह मत पूछना, मुझे मजबूत बनने की सलाह भी मत देना, बस मेरे पास चुपचाप बैठ जाना और मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से नहीं किसी अपने की मौजूदगी से हल्के हो जाते हैं, कुछ टूटन समझाने से नहीं साथ निभाने से जुड़ती है, और उस वक्त तुम्हारा कुछ ना कहना भी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तसल्ली होगी।

और दोस्तों, अब इसी नगमे के साथ हमें हमारे कार्यक्रम को देना होगा यहाँ विराम, और इसके बाद अब आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचारों के पार मैं श्रेयशी, अगला कार्यक्रम रात सुरमई लेकर फिर से आपके साथ जुड़ जाऊंगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिशों के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमरीका के समर्थन वाले उस नए 15 सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फिलिस्तीनी इलाकों से पीछे हटना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है कि राज्य में 1,440 चयनित डॉक्टरों के आने वाले दिनों में नियुक्ति किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 600 और डॉक्टरों की भर्ती का काम चल रहा है, साथ ही लगभग 250 डेंटिस्ट के भी जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम रात सुरमई। संघु मिश्र ऋषि और आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का इस गीत से।

गुलाम फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल सजाए समीर ने और संगीत है जतिन ललित का। बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। पिक्चर है सलामी और आवाजें दी हैं कुमार सानू और आशा भोसले ने, बोल सजाए हैं समीर ने और म्यूजिक है नदीम श्रवण का।

फिल्म मिस्टर आशिक का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाज़ कुमार सानू की, बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक जतिन ललित का। बढ़ते हैं बकले गीत की तरफ। बाजीगर से लिया है हमने ये अगला नगमा, आवाजें हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की, बोल सजाए देव कोहली ने और संगीत है अनु मलिक की।

मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना? लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

खामोशी फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाजें अलका याग्निक और हरिहरन की, बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत जतिन ललित का। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की, बोल सजाए हैं जावेद अख्तर साहब ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

वैसे तो गीतों का सिलसिला हमेशा ही एफएम गोल्ड पर जारी रहता है, ठीक उसी तरह हमारा ये कार्यक्रम रात सुरमय भी हमेशा यूं ही जारी रहेगा, ठीक इसी समय पर। लेकिन क्या करें, घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि जल्दी अब इस कार्यक्रम को हमें देना होगा विराम। लेकिन बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद यूं ही एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला रहेगा जारी। लेकिन अचानक से कुछ बातें हैं जो जहन में घूमने लग गई हैं। क्यों कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रेशन से लेकर डिप्रेशन तक, रिलेशनशिप से लेकर अकेलेपन तक, चैटिंग से लेकर ब्लॉक लिस्ट तक, और फिर समझ आ जाती है एक वो बात, कौन सी? ना जिक्र कर ना फिकर कर, ना जिक्र कर ना फिकर कर, बस अपने जज्बातों की कदर कर। जो तेरा होगा वो तुझे ढूंढ ही लेगा, बस तू अपनी बारी का सबर रख। कई बार ऐसा लगता है ना दोस्तों कि जिंदगी भर हमने कईयों के पीछे भागा, चाहे वो इंसान हो, जज्बात हो या कोई चीज हो, अंततः समझ में यही आ जाता है कि वो अपने तक तभी आएगी जब उसका सही समय आ जाता है। तो मैं तो आपसे बस यही कह रही थी कि जब किसी का सही समय आएगा तो ही वो गीत आप तक पहुंच पाएगा। तो ठीक है, अब रात सुरमई कार्यक्रम को हमें समेटने से पहले एक ये आखिरी नगमा आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। फिल्म अशोका से लिया ये गीत हमने, अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल सजाए गुलजार ने, और म्यूजिक दिया अनु मलिक का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा है कि विशाखापत्तनम आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरा मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। कल इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इंदौर नगर निगम लगभग 1,97,00,000 रुपए की लागत से ये प्रतिमा और उसका चबूतरा बनवा रहा है। ये प्रतिमा गन मेटल से बनाई जाएगी और इसके लगभग चार महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। ये जगह लोगों को देश के प्रति अटल बिहारी वाजपेयी की सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाएगी।

0: विश्व कप में आज भारतीय पुरुषों की टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज सेड दैट एम्पावरिंग द यूथ, poor women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government

3:56 हुए हैं दोस्तों। इस समय आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं बारिश की पहली फुहार मिट्टी की सौंधी खुशबू और खिड़की पर टप टप गिरती बूंदे। सावन का मौसम आते ही जैसे दिल भी कोई मीठी सी धुन गुनगुनाने लगता है। कहते हैं ना बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि ये तो पुराने एहसासों को भी जगा देती है। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह, और कभी बस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनकर। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को अपने सुर में समेटे है फिल्म अनजाना का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कभी कभी बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, वो अपने साथ कुछ अधूरी सी यादें, कुछ अनकहे एहसास और दिल को छूने वाली एक नर्म सी कहानी लेकर भी आती है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का। ये एक ऐसा गीत है जिसमें एहसास जगाता है बारिश की बूंदों के बीच। जब दो दिल करीब आते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई हो। इस गीत में बारिश है, रोमांस है और एक ऐसी मासूमियत है जो आज भी सुनने वाले के मन को भिगो देती है। कभी खिड़की पर गिरती बूंदों को देखते हुए, कभी किसी पुरानी याद में खोए हुए, ये गीत हमें उस खूबसूरत एहसास तक ले जाता है जहाँ शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं।

कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये प्यारा सा गीत। दोस्तों, काले बादल जब आसमान पर छाते हैं तो मौसम ही नहीं बदलता बल्कि दिल का मिजाज भी बदल जाता है। कभी ये बादल किसी पुरानी याद को साथ ले जाते हैं तो कभी आने वाले खूबसूरत पलों की उम्मीद जगा देते हैं। बारिश की बूंदों में एक अजीब सी मिठास होती है, जैसे प्रकृति धीरे से कह रही हो कि इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक दिन खुशियों की फुहार जरूर बरसेगी। और जब ऐसे मौसम में कोई प्यारा सा गीत गानों तक पहुंचे तो यकीन मानिए ये सफर और भी सुहाना हो जाता है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं अनजाने फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और साधना सरगम ने।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन किसी खूबसूरत सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म पहेली का, जिसमें एक प्यारा सा लोक रंग छुपा हुआ है, प्रेम और प्रकृति की खूबसूरती एक साथ घुली हुई महसूस होती है। तो आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और हेमलता की आवाज़ों में फिल्म पहेली का ये प्यारा सा गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तीन बजकर 34 मिनट और 20 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो दोस्तों, मौसम के बारे में और बारिश के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, अब कुछ अलग बात करते हैं। कभी किसी की एक मुस्कान दिल को रोक लेती है, कभी कोई अंदाज बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है, और फिर दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ दोस्तों, हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत, जहाँ शिकायतें भी प्यारी लगती हैं और किसी की अदाएं दिल की धड़कनों को और भी तेज कर देती है। इस गीत में मोहब्बत का वो खूबसूरत अंदाज है जिसमें थोड़ी शरारत है, थोड़ी झिझक है और बहुत सारी अनकही बातें हैं। रिश्तों में भी यही छोटी छोटी अदाएं तो यादें बन जाती हैं, कभी मुस्कुराने की वजह तो कभी दिल को गुदगुदाने वाला एहसास। तो आइए सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत, आवाज़ें

दोस्तों, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में पूरी नहीं होती, और कुछ रिश्ते, कुछ पल, कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कीमत हमें उनके खोने के पास समझ आती है। अब जो गीत आप सुन रहे हैं, इसी खूबसूरत सच को बयां करता हुआ ये गीत है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और किसी का सच्चा साथ ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता।

इंतज़ार, ये भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा है। जब किसी अपने के आने की उम्मीद दिल में होती है तो वक्त की हर घड़ी जैसे उसी एक पल का इंतज़ार करने लगती है। शायद रिश्तों की खूबसूरती भी इसी में है कि किसी का साथ मिलने से के पहले भी और उसकी उम्मीद दिल को खुश रखती है, और जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो वही पल सबसे खास बन जाता है। तो आइए उम्मीद और इंतज़ार की इसी मीठी सी कहानी को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म दीवाना का ये खूबसूरत गीत, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे कि कभी कभी जिंदगी में किसी एक इंसान का मिल जाना जैसे पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दे देता है। मुश्किलें वही रहती हैं, रास्ते वही होते हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। किसी का साथ मिल जाए तो लगता है जैसे उदासी के बीच भी मुस्कुराने की वजह मिल गई हो, जैसे अकेलेपन के बीच कोई अपना हाथ थामने आ गया हो। रिश्तों की असली खूबसूरती शायद यही है, कोई आपकी जिंदगी की हर परेशानी खत्म भले ही ना कर सके, लेकिन उसका साथ आपको हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे डाल सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हंसते जख्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं

0: की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ कल नेपाल के 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ आज टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे और नेपाली सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक उन्हें आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। भारत कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आज इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होगी। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan, yesterday after laying the foundation stone.

आकाशवाणी का दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम अरुणिमा, और एक बार फिर से हूँ आपके साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जिंदगी की राह पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखिए, रास्ते कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कदम संभाल कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि मंजिल सिर्फ तेज़ चलने वालों को नहीं बल्कि सही दिशा में चलने वालों को ही मिलती है। कभी रास्ते में ठोकर मिले तो रुकिए मत, उससे सीखिए। कभी कोई आपको पीछे खींचे तो अपनी रफ्तार मत भूलिए, और जब रास्ता मुश्किल लगे तो खुद से बस इतना कहिए, मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। जिंदगी भी तो यही कहती है कि आंखें खुली रखो, दिल मजबूत रखो और हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि सफर लंबा है और मंजिल आपकी अपनी है।

दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

दोस्तों, जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा लगता है कि हम जैसे बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के साथ एक ऐसा साथी हमेशा रहता है जो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता, उसका, और वो है उसका अपना हौसला। जब रास्ते मुश्किल हों, जब अपने भी साथ नजर ना आए, तब अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए। वही आवाज़ आपको याद दिलाती है कि आपने अब तक कितनी मुश्किलें पार की हैं। हर अंधेरे रास्ते में आपकी उम्मीद आपका साया बनकर आपके साथ चलती है। बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा रखने की। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया में।

जिंदगी सचमुच एक खेल है। कभी जीत हमारे कदम चूमती है तो कभी हार हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो कोई किताब भी नहीं सिखा सकती। इस खेल में हर किसी की अपनी पारी है, अपने उतार चढ़ाव हैं। कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, खेल वही जीतता है जो मुश्किल चाल देखकर मैदान छोड़ता नहीं बल्कि अगली चाल सोचता है। तो अगर आज हालात आपके मुताबिक नहीं हैं तो मायूस मत होइए, क्योंकि जिंदगी का खेल अभी बाकी है, आपकी कहानी अभी बाकी है।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ किसी एक इंसान से जुड़ने का ही नाम नहीं, बल्कि प्यार तो उस एहसास का नाम है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब दिल में प्यार होता है तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं, रास्ते आसान नहीं तो कम से कम हौसले वाले ज़रूर लगते हैं। इसलिए अपने दिल में प्यार बचा कर रखिए, अपने सपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए और सबसे ज़्यादा अपने उस सफ़र के लिए जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बना देता है। क्योंकि जिस दिल में प्यार और उम्मीद जिंदा हो, उसे ज़िंदगी की कोई भी चुनौती लंबे समय तक नहीं रोक सकती।

4:34 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ, और चैनल वही है आपका आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त कभी रुकता नहीं और जीवन के दिन सचमुच छोटे होते जाते हैं, तो शिकायतों में दिन क्यों गंवाना। जब कह जो कहना है आपको वो आज ही कह दीजिए, जिसे अपना मानते हैं उसे आज ही महसूस कराइए, और जो सपना दिल में है उसके लिए आज ही एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि कल की गारंटी किसी के पास नहीं होती। जिंदगी छोटी हो सकती है, मगर अगर आपका दिल बड़ा हो तो वही छोटी सी जिंदगी भी बहुत बड़ी कहानी बन जाती है।

दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हालात हमें पीछे हटने, लोगों से नज़रें चुराने और अपने सपनों को छुपा देने पर मजबूर कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान आपकी मुश्किलें नहीं बल्कि उनसे लड़ने का आपका हौसला है, आपका नज़रिया है। हर इंसान की कहानी में कुछ अधूरे पन्ने होते हैं, कुछ हार होती है, कुछ पछतावे भी, लेकिन कहानी खूबसूरत बनती है जब इंसान उन पन्नों को पलटकर आगे बढ़ना सीखता है। तो सिर उठाकर चलिए, क्योंकि जिंदगी छुपने के लिए नहीं, खुलकर जीने के लिए मिली है। और आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि एक दिन पीछे मुड़कर देखे और कह सके, मैंने हालात से नहीं, अपने हौसले से अपनी पहचान बनाई है।

कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते और ऐसे लोगों को का साथ देती है जिन्हें वक्त चाहे जितना आगे ले जाए, दिल उनसे दूर नहीं हो पाता। लेकिन किसी को याद रखना सिर्फ बीती हुई बातों में ठहर जाना नहीं है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपनी जिंदगी में आगे लेकर चलना भी होता है। जिन लोगों ने हमारे सफर में हमारा साथ दिया, उनकी अच्छाइयों और उनकी बातों को दिल में संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, इंसान की असली पहचान उनके रिश्तों और उनकी एहसान से मिली होती है। जो गुजरे हुए कल को बोझ बनाते हैं वो हमेशा कठिनाइयों में रहते हैं, इसलिए गुजरे हुए कल को बोझ मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। जिन्होंने आपका साथ थामा उन्हें याद रखिए, और जो आज आपके साथ हैं उनकी कद्र कीजिए।

और चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें पल दो पल की होती हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए हो ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी तो ये है कि जब तक आपका साथ हो उस पल को पूरी शिद्दत से जिया जाए। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही होती है, आज जो समय हमारे पास है शायद वो समय कल ना हो, इसलिए बीते हुए कल को लेकर पछतावे के बजाय आज को मुस्कुराना सीखिए और आज मुस्कुराते रहिए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए उन्होंने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया और जो चले गए उन्होंने आपको और मजबूत बनाया। तो इस पल को थाम लीजिए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, दिल से कहिए जिंदगी लंबी हो या छोटी, खूबसूरत वही है जिसे हम पूरे दिल से जीते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी अर्चना बिसारिया को आप अनुमति दीजिए, लेकिन आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आज इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों

0: महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, वहीं वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की अपनी योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से बुलाया है। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगा। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। इसमें 22 चेक इन काउंटर, 18 सेल्फ बैगेज ड्रॉप यूनिट, स्क्रीनिंग सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं और 7 एरोब्रिज शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव कल खेल समाप्त होने के समय क्रीज पर थे। देवदत्त पड्डीकल अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर 167 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

5:10 और 55 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वाणी जयराम के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड्डी से।

वाणी जयराम के गाए इस गीत के बाद आइए अब सुनवाते हैं आपको सरगम फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।